गोविंद नाम मत बिसरे। ए बहन, उस गोविंद दा नाम ना विसरे, क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा, जुड़ना विच भटकना पवेगा, दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया में।

अपनी लड़कियां नाल प्यार करता है, सोने मकान बनाने वास्ते यतन करता है। ऐसे इंसान भी ने जिहड़े इन्हां चीजां नाल प्यार करदे, पर उन्हां नूं अखीर मिलदा की है? आप जी बयान करदे ने ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल प्रीत करे उन्हूं की मिलदा है? भगत त्रिलोचन जी अपने शब्द विच बयान करदे ने, अखीर नतीजा यह कढ़िया, दुनिया नाल प्रीत करो तां दुख मिलदे ने, उस गोबिंद दे नाम दे नाल प्रीत करो तां उहदे चरणां विच

अंत काल जो लक्ष्मी सिमर लक्ष्मी के माया जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तू वध पैसे कमा लो भावे ओदे वास्ते पाप करने पे भावे ठगी करनी पवे भावे डाका मारना पवे पर पैसे जरूर कठे कर अंत वेला आंदा नाम नहीं जपया मरण लग गए ते तामी चिंता करता है कि दुनिया तू एवें तुर चले हैं मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई अंत वेले माया वाले ध्यान मौत हो गई तां भगत जी बयान करते ने उस इंसान नू अगला जन्म का

अंत काल जो लड़के सिमरे जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रा वाली ध्यान रखे नाम ना जपे अंत वेले भी ओदा ध्यान लड़कियां वाल है नाम नहीं जपया नाम वाल ध्यान नहीं जे लड़के होए आग्या कारनी तां दुखी जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी ए नहीं कहंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी उदा नाम नहीं जपया अंत वेले भी लड़के दा ध्यान मौत हो गई

नाम ना जपे मौत हो जाए ता ओदा अगला जन्म सुकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिलदा है। आपने देखे होवेगा के सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे होंदे ने। इस तरह ओ इंसान सूर दी जूने पै के अपने बच्चियां वाली तृष्णा पूरी करदा है। भगत जी कहंदे ने जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए हैं।

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा। तेरा पिता बगयाड़ी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारिया नू रोटी खानी भुल गई, सारिया दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड़ी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नू प्राप्त नहीं होया और बग्याड़ दी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना हूं, ते कि मेरा ए दान पुन मेरा ए भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे नहीं दुनी चंद, तेरे दान पुन दे सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया, तेरे पिता नु मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ए जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इनू चुक लै। लाहौर दे दक्षण वाले पासे 3 मील दी विथ ते एक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बग्याड़ दी जून विच 3 दिनां दा भुखा लम्मा पिया है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मन तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकिया, उस प्रशादे ते धन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर के बाहर तुर पे है। भगत त्रिलोचन जी कहते ने, ऐ भाई जे जूना विच नहीं भटकना ते आ फिर परमेश्वर

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी है।

सब जग बाधो काल को, सारा जग मौत दे वस है, सारियां नू मौत आनी है, पर कदू आनी किसे नू पता नहीं। मरना जरूर है, मौत तू कदी कोई बचिया नहीं, पर समझ नहीं आंदी इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है। पता भी है मैं मर जाना, मेरे नाल कुछ नहीं जाना, पर इंसान फिर भी पाप करता है, फिर भी नाम नहीं जपदा, कहता है ए भी मेरा ए भी मेरा, पर कुछ भी इसका नहीं। प्यार ऐसा ही है, कहते सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है, पर धन गुरु नानक साहब कहते ने को मरे ना मोया नाले, जिहड़ा इंसान मर जाता है ओदे नाल मरदा कोई नहीं। एक औरत आदमी दा पुत्र मर गया, बड़े रो, मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जाता, पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जाता, मेरी उम्र तेनू लग जाती। इन्हां दोनों का यह रोना देख के कोई महापुरुष उस पासे आ निकले।

प्यारे गुरुदेव, सच्चे पातशाह, सतगुरु साहिब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, गौड़ी चेती महला पहला दा ए शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी का जो एक सफर है अते ओ सफर की मंजिल नूं असीं जो खो चुके हाँ, उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं।

साहिब दी समग्र बाणी दे नाल आपने पाठ शुरू किया। किसी कार्य की संपूर्णता तदों हुंदी है जदों सारियां विधां जुड़ जाण। जे एक विध की घाट रह जाए तद संपूर्णता कार्य के अंदर नहीं हुंदी। जैसी संपूर्णता की कार्य नूं आरंभन जां चितमन वेले मन विच भावनक रूप विच प्रगट हुंदी है, वो प्रतक्ष रूप विच उदों ही प्रगट हुंदी है, सामने आउंदी है जदों सारियां विधां इकट्ठियां होण। संगत करनी होवे पहली बिलता ए बने भी कोई स्थान नसीब हो, फिर ए बिद जुने भी चौर तख दे मालक साहब सतगुरु गुरु ग्रंथ साहब दा प्रकाश होवे, फिर ए बिद जुड़े उस स्थान ते साहिब दी हजूरी विच जुड़न वाले गुरमुख गुरसिख महापुरख साधु भी इकट्ठे हों, ए विध भी जुड़े ते जदों ये सारियां विधां बन जान जुड़ जान ते एक आहर गुरु पातशाह उन्हां अपनी हजूरी विच जुड़ बैठिया नूं बख्शे, वो आहर की है। साहिब ने बाणी अंदर जिक्र किया आहर सब करता फिरे, आहर एक ना होए। इहदा इह अर्थ नहीं भी सारे आहर करता फिरदा पर एक भी आहर नहीं हुंदा, यह नहीं अर्थ है। इसका अर्थ है भी सारे आहर करता फिरदा इंसान पर कम दा लेखे वाला सफल जिहड़ा आहर है वो एक आहर नहीं है तो हुंदा है। ये निंदा चुगली बखीली का आहर भी कर सकता है, अणहोनी भी सहेड़ लेंदा है, राह जांदे नूं भी खड़ा कर लेंदा जदों किसी की गल करनी होवे। जे झगड़ा सहेड़ना होवे फिर भी तुरे जांदे नूं भी आवाज मार लेंदा है। संसारक सुखां दी लोड़ होवे किरत कमाई लई भी आहर यह कर लेंदा है। सजना मित्रां दी सोसायटी दी लोड़ होवे ते ऐसे भी विचार वटांदरे वाले अपने मेली हमजोली इकट्ठे कर लेंदा है। संसारक पक्षों जीवन दे नाल संबंध रखण वाले समुचे आहर जिस जिस दी इहनूं लोड़ हुंदी है उहदे इकट्ठ लई इह उद्यम करदा है। पर जिहड़ा लेखे वाला आहर है जिसने इसका जन्म सफला करना है वह यह तो नहीं हुंदा।

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल के सवाल

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तों बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नूं आज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नूं।

गुरु का दिता होया निशान केसां दे अंदर कंघा रखना ते दोनों वक्त केसां दी सफाई करनी कंघा फेरना दस्तारा जड़ा है इस नूं उतार के बड़े आदर सत्कार दे नाल दस्तार नूं फिर सजाउणा टोपी जी सिर दे उपर धर लैणी ए गुरसिख दा कर्म नहीं कंघा दोनों वक्त कर पाग चुने कर बंद आई दातन नीत करे ते मुख दी सफाई करे क्योंकि जिस मुख विचों जिस रसना नाल परमात्मा दा नाम जपना ओ रसना पवित्र होनी चाहिए ओ मुख पवित्र होना चाहिए भाई नंद लाल जी गुरसिख दोनों वक्त कंघा करे गुरसिख दस्तारा सजावे झाड़ के छंड के दस्तारा सजावे अते मुख नूं पवित्र रखे।

ठगी यारी दा पैसा एकत्र कर दें ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख की गवाही सची दर

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैण उसनू मां भैण दा रूप जाने, धी नू धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नू आज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैण जो आवै संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करै क्रोध, कन्या मूल ना देवै सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैण नू मां भैण ना जाने, धी नू धी दा रूप ना जाने, गरीब नू आज सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख, ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बची दा गला घुट देना, गरीब नू आज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नू बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है वह सपुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सपुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नू इको जिहा प्यार देवे।

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा होए सिख सिर टोपी तरै सात जन्म कुश्ती।

साहब ते जाप साहब तो बगैर जेड़ा गुरसिख खाना खांदा ना खुराक खांदा जेड़ा गुरसिख भोजन छकदा जल पान छकदा गरीब नवाज कहंदे ओ भोजन नहीं ओ खुराक नहीं ओ विष्टा दा किरम होके ते ओ विष्टा दे अंदर मुंह मार रहा है बिना जपजी साहब ते जप साहब तो बगैर बिन जप जाप जपे बिना जो जेवै प्रसाद सो विष्टा का किरम होए जन्म गवायो वाद व्यर्थ जन्म गवा दिता है। इथों सिद्ध है गुरु के सिखो अमृत वेले हो उठ के जपजी।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर काम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है, गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

गुरु के सिखां कोल धन अपार है, ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है, जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है, सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे, औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई, युवती जित सुत विद्या बहु भाई। दूजी है विद्या, विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे, किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बहु भाई, ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कियां दातां जाने। दाता जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे, ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब

नंद लाल जी मैं वचन कह ना गुरसिखा नू ए गल नहीं भी केवल गुरसिखा वास्ते ही ने भाई जेड़े गुरसिखा ने अमृत छकिया मैं इना नू वाक दिते ने मता तुहाडे मन अंदर कोई ख्याल आ जे भी साहिब गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने इतनी करड़ मर्यादा दिती है सख्त मर्यादा दिती है इस करके मैं आप जी नू अपना भी एक वचन दसना जो मेरे पूरे पिता गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज ने मैनू

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लह। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाही या दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह का प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज के दिते हुए इस रहतनामे दे। ये गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी के वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज।

सतनाम। सतनाम श्री वाहिगुरु। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज। नमस्कार गुरुदेव को।

जिम बुलावे तुम बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी साध संग नानक जस गायो साध संग नानक जस गायो जो प्रभु की अत प्यारी तन गुरु नानक देव जियो महाराज गुरु नानक पद पंकज बंदन

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कत।

साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही भरपूर। साध की शोभा का नहीं आना, साध की शोभा सदा। सतगुरु युगो युग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्दावतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तप स्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजरियां लगवाउन दे लई, सतसंगत हरि जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दिया अमोल कड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनिया बना रहे हो, सचमुच इन्हां कड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगत मना रही हैं। साहबजादे बाबा जी सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जिया के 300 साल दिहाड़े संगत मना रही हैं। ये कितने दिहाड़े कट्ठे हुए हैं। ब्रह्मज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, वडभागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो सतनाम श्री वाहिगुरु। वेदां तो भी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करते हैं, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकते। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुद्र का अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां का भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हैं, परंतु सात संगत उस दी कुदरते कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जाता है। बोलो सतनाम।

साहब दे अंदर ए दो अष्टपदियां साध की महिमा वेद न जाने ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेखा एक सिवन कोई नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। सुखनी साहब दे अंदर गुरु महाराज जी ने साध संगत वर्णन कीता बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरुषां दी पवित्र याद विच बैठे हां जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम वज वज के तिना हिस्सों के बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी सब जीव नहीं मारता, ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता, सृष्टि का कर्ता भी ब्रह्म ज्ञानी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: दूसरी सृष्टि साजन भी वो समर्थ है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: ब्रह्म ज्ञानी सो ऐसी महिमा ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दी गुरु अर्जन देव महाराज जी सुखमनी साहिब दे विच वर्णन करदे हन। असीं लोक ए सारियां रूहां सारियां आत्मावां परमात्मा तो विछड़ियां होईयां हन। परमात्मा तो विछड़ के असीं किन्ने नीवे चले गए, किन्ने दूर हो गए, विछड़ गए। 84 लाख जून दे विच भरम दे भटकदे फिरदे हां। अपने कीते हुए माड़े चंगे कर्मां दा हिसाब भुगतदे फिरदे हां। अनेकां तरां दे दुखां सुखां दे विच फसे होए हां। इस संसार दे विच अपने कर्मां दे बंधनां दे विच पए होए इतने पतंत्र हो गए हां। ब्रह्म ज्ञानी कौन हन जे

0: परमात्मा दे नेड़े हुंदे होए नाम जपदे जपदे जपदे इतने लीन हो गए और सारे कर्मां बंधनां तो रहत हो गए। वो लो सतनाम
1: श्री वाहिगुरु।
0: उन्हां दी महिमा देवत्यां तो भी उच्ची है। देवते भी उन्हां दी चरण धूड़ नूं खोजदे फिरदे ने। गुरु अर्जन देव महाराज जी कहिंदे ने श्री सुखमनी साहिब दे अंदर ब्रह्मा विष्णु महेश तिन्ने देवत्यां दे विचों वड्डे मन्ने गए हन, जिन्हां दी भाई हिंदू मत दे विच पूजा हुंदी है। गुरु अर्जन देव महाराज कहिंदे हन

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हों देवत्या दे सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसी जंगल के रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी इह धूड़ मत्थे ते लगा रहे हो, क्यों नमस्कारां करदे हो? भगवान शिव जी कहंदे ने, हे पार्वती, इस धरती ते ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने तपस्या कीती है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: यह धरती का कण कण पवित्र होया होया है, इस धरती की यह समर्था है कि पवित्रता बख्श सकती है। ब्रह्मज्ञानी बाबा जस्सा सिंह महापुरुषों का जीवन बड़ा अद्भुत है, बड़ा सिख्यादायक है साढ़े लोगों वास्ते। भावें संसारक तौर पर महापुरुषों के जीवन नू कोई सास उस दा कोई अंत नहीं है। कुछ समझण वास्ते असी अपनी बोली दे विच ओ विचारां करदे हां। सो बाबा हरदित सिंह महापुरश जिन्हां दी शरण दे विच बाबा जस्सा सिंह जी आए, भाई वीर सिंह होनी जिन्हां ने सास संगत जिन्हां दे नां तों सारे लोग जानदे हन, भाई वीर सिंह जिन्हां ने कितनियां पुस्तकां लिखियां गुरु जस दियां, बाबा हरदित सिंह उन्हां दा पवित्र स्थान साध संगत पटियाले डेरा बाबा जस्सा सिंह, संत गुरमुख सिंह साध संगत संत बाबा नंद सिंह तों उपरंत ते साध संगत उन्हां दा कथन संत बाबा गुरचरण सिंह उन्हीं साध संगत सुणाउंदे हुंदे हन पटियाले वाले। भाई वीर सिंह जी साध संगत पटियाले आए, संत गुरमुख सिंह उन्हां नूं मिले, जदों भी आउंदे ओ डेरे दे विच होके जांदे, मिलके जांदे। शाम दा वक्त हो गया, भाई वीर सिंह जी विरध अवस्था विच पहुंचे हुए सन, परंतु एक दिन उन्होंने यह कहना कीता कि भाई गुरमुख सिंह, अज साडे कोल टाइम नहीं है, अज असीं जल्दी जाना है, साडे कोल बड़ा थोड़ा वक्त है, असी जल्दी जाना है, जल पानी छकन दा चाह पानी छकन दा सानू ना मजबूर ना करो, साडे कोल टाइम नहीं है, गड्डी दे विच बैठे बैठे ही बस जो कोई गलबात करनी है कर लो। ते गड्डी दे विच बैठे बैठे भाई वीर सिंह जी उन्होंने कहना कीता, भाई गुरमुख सिंह जी, साडे कोल टाइम तो नहीं है, परंतु असी चाहते हां कि असी बाबा हरदित सिंह उन्हां दे इस ते असी नमस्कार कर लिए, एक बारी गुरु साहब नूं मत्था टेक लिए। संत गुरमुख सिंह जी हाथ जोड़ के कहंदे ने, जिवें आप जी दी मर्जी होवे। भाई वीर सिंह जी गड्डी तों उतरे, महापुरशां दे पवित्र स्थान ते नमस्कार करन लगे, मत्था टेकन लगे। असी लोग मत्था टेकदे हां, नमस्कार करदे हां, भाई हुण मत्था टेकिया, सारिआं ने जल्दी नाल मत्था टेक के खड़े हो गए, ते बहुत इन्हें तो मत्था लाया भी नहीं, जे किसी ने लाया तो थोड़ा जा मत्था ला के बस चुक लिया। भाई वीर सिंह जी ने मस्तक लाया, मत्था लाया, सारे उठ के खड़े हो गए, परंतु भाई वीर सिंह उन्होंने मस्तक नहीं चुकया। पांच मिनट निकल गए, सारे देख रहे हैं, दस मिनट निकल गए, पंद्रह मिनट निकल गए, बीस मिनट निकल गए, पच्ची मिनट निकल गए। बोलो
1: सतनाम,
0: इतने मिनट नमस्कार, इन्नी लंबी नमस्कार, इतना वड्डा मत्था टेकना, नमस्कार करनी, ते साध संगत संत गुरमुख सिंह ने कहंदे, असीं सोचदे हां भई 25 मिनट मत्था टेकना, नमस्कार कीती, फिर गड्डी तक आए, फिर कहंदे हन भाई वीर सिंह संत गुरमुख सिंह के भाई गुरमुख सिंह जी साडा जी करदा सी इक वारी होर मत्था टेक लिए, बोलो सतनाम। टाइम नहीं है साडे कोल, बड़ी जल्दी जाना है, परंतु जी करदा एक बारी होर ना मत्था टेक लिए। कहंदे महाराज जी मैं आपकी मर्जी है टेको। भाई वीर सिंह जी फिर मत्था टेकन लगे, नमस्कार करन लगे, इसे तरह 20-25 मिनट का फिर टाइम निकल गया, बोलो सतनाम। संत गुरमुख सिंह जी ने हाथ जोड़ के बेनती की, महाराज मैं कदे थानू कोई प्रश्न नहीं किया, कदे सवाल नहीं किया, मेरे मन दे विच कदे कोई शंका आया ही नहीं, परंतु अज मेरे मन दे विच एक ख्याल आया है, मैं पूछना चाहुंदा हां। भाई वीर सिंह जी कहिंदे पुछो, की पूछना चाहुंदे हो? महाराज नाले तां तुसीं कहिंदे साडे कोल टाइम नहीं है, असीं बड़ा जल्दी जाना है, जल छकन का भी टाइम नहीं, बैठन का टाइम नहीं, नाले तुसीं मत्था टेकदे नमस्कार करदे 25 मिनट मत्था टेकिया, 20 मिनट 25 मिनट नमस्कार कीती, दुबारा फिर 20-25 मिनट नमस्कार कीती, नाले कही जांदे हो साडे कोल टाइम नहीं है, बोलो सतनाम। भाई वीर सिंह जी हस पे, कहन लगे भाई गुरमुख सिंह इस धरती ते इतनी तपस्या हुई है, इतना परमेश्वर दा भजन होया है, असी तो अपने आप नू नमस्कार करके मत्था टेके चार्ज कर रहे सी, बोलो सतनाम। जिमें बैटरी डाउन हो जांदी है कम करदी करदी, फिर उस नू चार्ज करने की लोड़ पैंदी है, कहंदे ऐसे तरह असी तो मत्था टेके असी अपने आप नू चार्ज कर रहे सी, अपनी उस शक्ति ग्रहण कर रहे सी। सो साध संगत जिथे वाहिगुरू दा भजन, वाहिगुरू दा सिमन, किसे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां दे चरण पए होन, भगती कीती होवे, सो शिव जी भगवान कहंदे हे पार्वती इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुषां ने, असीं एवें नहीं कहंदे, इथे कोई मंदिर कोई होर धार्मिक स्थान है तां है नहीं, जिथे तुसीं मत्था टेकदे हो इह धूड़ चक के मत्थे नाल ला रहे हो, कहंदे इथे ब्रह्म ज्ञानी महापुरुष ने, किसे ने परमात्मा दी याद विच लीन हो के ओदा भजन कीता है, बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: ऐसे करके गुरु अर्जन देव महाराज कहने फिर पढ़ो।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भगती की जो अखरों द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हां दे पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं एसी गुरमुख की कठाली विच ढाल लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुओं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुओं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी का सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्हां नाल बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुओं को बैठा करते, भाई फकीरों को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी सास आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते सास संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर सास सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी कम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घरवाली तेरी कदे ख्याल रखिया? वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकदे, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आउणा है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन, बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए? कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह? कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है, जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रशादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है? की करिए हुण? किसे नहर च धक्का दे दिओ? कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए? पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह। बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनूं पंजां प्यारे ने नाम दी दात दित्ती है, ते नाले कहा जो तैनूं इह गुरमंत्र दित्ता है, मूल मंत्र दित्ता है, नाम दित्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इहनूं भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डणा। इह नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन, लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संगत, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव, जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए? बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती कीती महापुरशो कृपा करो इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इस बालक नूं अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका इह तां बालकी है भाई, इह तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम। दुनिया दी इक निगाह नहीं है, ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम।
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनूं तां कोई परवाह नहीं, तुहानूं दुनिया दी परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तूं तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਸਾਹਸ ਲੰਮੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਹਨ। ਸਾਹਸ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਿਉਂ ਬਈ ਤਿਆਰ ਹੈ? ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਇਹ ਫਕੀਰੀ ਕਰਨੀ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਭੇਸ ਧਾਰਨਾ ਸੌਖਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਬਾਬਾ ਜੱਸਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਹਿਣ ਕੀਤਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਕਮ ਹੋਵੇਗਾ ਮੰਨੋਗੇ? ਹਾਂ ਮੰਨਾਂਗੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕੀਤਾ ਬਈ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਰਸਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीज नांगल नहीं हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती की सी, क्यों इसनू घरों धक्या गया। पकड़ वास्ते सास संगत मगर बई, उसनू भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नू, भी दस तू की गुनाह किया सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: मुर्दा होए मरीद ना गली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौन ते सुट दिंदे सी, ना कहंदे 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री वाहे।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास संग गलेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संग तुफण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो सतनाम
1: श्री
0: वाहे। देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाट घट रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरश ने, इस करके सी नी। सास संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना।

उच्चारण करो श्री वाहे गुरु, पर ऐसी दृष्टि कि वो जिधर वेखते हैं जरे जरे विच परमेश्वर का नाम नजर, परमेश्वर की जोत नजर आवे, ये शब्द की कमाई तो होती है। कबीर जी कहते हैं, अल्लो अलख न जाई लिखिया गुड़ दीना मीठा, कह कबीर मेरी शंका नासी शरब नरंजन दीता। जदों मैनू पूर्ण गुरु ने नाम रूपी गुड़ दे दिता ते उस नाम की कमाई की थी, ते फिर हुण कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा। एक वेरा का जिक्र है भगत नामदेव जी नू, हंकारी पंडिया ने आख्या है नामदेव तू बड़ा नास्तिक है, क्योंकि अगे ठाकरा नू इशनान कराउंदा सैं, फुल्लां दी माला चढ़ाउंदा सैं, दुध का भोग लवाउंदा सैं, हुण तू कुछ भी

मैं जिधर वेखदा हां बीठल ही ईश्वर ही ईश्वर नजर आउंदा है ते जिथे वेखदा ईश्वर अपने आनंद विच मगन होया होया है। मैनू कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा तां पंडिया ने आख्या कदी दुध दा ही भोग लवा लिया कर तां भगत नामदेव

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली है। वो समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है।

ते बाबा संगत विचों बिछड़ गया है। संगत अगे लंघ गई ते बाबा पिछे रह गया है। रस्ते दे विच खलोता है, पांड चुकी नहीं जांदी, तुरिया नहीं जांदा, ते ऐ मना हुण की करां। जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावांगा। उच्ची देनी आवाज मारी, वे है कोई हो जाया जिहड़ा मेरा भार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ना, बाबा की तक रहा है, ओ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है। भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जा, लिया बाबा तेरी पांड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पांड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्हें भी ले आए सन सब ने पेटा दे देती है। ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगे, चंगा वे गरीब जे तू नहीं आना ते मैं तेरे कोल आ जाता। जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना, बैराग दी हद ना रही, अखां दे विचों हंजो घिर आए, संगत दे विच तुरे आ रहे ने, ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे, क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं लिया।

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म आकारत कीन, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारिया श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए भलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी। हुण तेरा कारोबार